0: है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
1: रेडियो अमन करक आपको दे रहा है एक खुशखबरी। अब आप अपने दिल की आवाज रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फरमाइशों और चाहतों का इजहार मैसेज के जरिए कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां पर टाइप करें RAK, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर अपना नाम लिखें, फिर अपने इलाके का नाम और अपना पैगाम लिखकर हमें 8583 यानी 8583 पर भेजें। आपका मैसेज हमारे प्रोग्राम की रौनक।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: आप सुन रहे हैं FM 88.4 अमन रेडियो करण।

मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाएं। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों

0: Τώρα είμαστε με ζητάρ το ούγε γέζι από τα σαπάρ σε δετά σε έχω χαστηρί.
1: Για να τίσε τα αρχανά από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ έχω χαστηρί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ. Μάρα είμαι ζητή μόχο κορτά national ο μάτι national. Καπνέ βάλ βάσινγκ πόρτερ βαρίβι. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίσε τα σαράγγε σαρά προβρέ.
1: Βέλκολ τα αρχανά τα γιλέ βε χάρβαχτε μούταχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοράλ σε ρικρέτη. Ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याहे कुर्ता जहर सरावरों उदार तो ये या कि पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी कि कपड़े सा पर युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर निस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सा पर ही पवात लोसीना नखर पावी
0: شام از دی چه دام رکشلای ریزلت یا دای دارتا اویه چه داو موتا چیرتا ملاویشی
1: تار کنا داو تو دا پا بانگول شه اندرون لکی گیرد جان زبه گاله پر شوی مارکی شه دیشما من دیستیبیوتر حافظ زیر سیب سار او درتا ملاویشی

जी जनाब 0-332-80-80-101 0-332-80-80-101 गोरा लिया मुतकाल ने कई कॉलेज अटेंड कौन मुझे नहीं पहला पहला जो खुन हाजरी चाय सेख थी देखिम जनाब सरा माशाल्लाह मुनसले को सा एक सरा सरा दे मुबीन और मतीन मुबीन और मतीन डेरा मनना जजाक अल्लाह खैर जजा इशफाक भाई डेरा मनना जजाक अल्लाह खैर जजा ओ सरा सरा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह यो जलबिया तो सरा शेयर कमीन का अकबल नंबर 0-348-97-80-495 अबल नंबर चमिदा 0-332-80-80-101 कालिल या मरता का ये पहला मैसेज ना मुता का ये चाहे मुता पता हो लगे जी चे कीम कीम का सोंदे कीम जना मोसरा माशाल्लाह तो से प्राप्त शो सा डेरा मनना जजाकला।

0: माशाल्लाह
1: कल में हिरीगी सिफत में और दलदा नजम बल ख्वाता मदीना में दया रखलदा।

मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बाल।

0: Τώρα μαζί με ζει, τάρτο βγαίνει για πάντα σαν πάρσι δε τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαν πάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρταρ ο χωστηθεί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρταρ, μάρα με ζει μόχο κορτά national ο μάλτι national, καπνέιβολ βάσινγκ πόρταρ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα γιλεύε χάρβαχτε μούταχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρταρ βοήβη σε ρικρέ δι, ο στούλ κούρβαλα να χωσούλ δι.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो उदार तो ये या के पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पर युक्त ले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बत इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नहर पवी
0: شام از دی چه دام رکشلای ریزلت یا دای دار تا اویج داو موتا چیرتا ملاویجی
1: تار کھانا داو تو دا پا بانی گل شے اندرون لکی گیٹ جان زیبے گالے پر شوئے مارکی شے دیشما مین ڈسٹیبیوٹر حافظ زیر سیب سارا ادھر تا ملاویجی جان ستا

0: Τώρα είμαστε με τη Δάρτα που γεγέζει από τα σαπάρση δε τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ ο χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ. Μάρα είμαι τη μόχο κορτά national ο μάλτι national. Καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλεύε χάρβα τε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβη σε ρικρέτη. Ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτι.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो उदार तो ये या जे पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पर युक्सले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म कवी जाखर सजूत की वो दिनोर सरफे पर निस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाम इस जी जे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला वीजी
1: तारे खाना

0: से।
1: डाली में एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीमयाफ्ता बनाए। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।

क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नए मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345 93 32 580।

0: Τώρα είμαστε με τη Δάρτα που γεννήσε από τα σαπάρ και δεν τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τι σε τα ρεχανά από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρταρ έχω χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρταρ. Μάρα είμαι τη μόχο κορτά national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρταρ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίσε δαστάραγγε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλεύε χάρβα τε μουτάχα κούρσε κραλή. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρταρ βοήβη σε ρικρέτη. Ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो उदार तो ये या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सा पर एक शोले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म कवी जाखर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पर ही पवात लोसीना नखर पवी
0: شام از دی چه دم رکشلای ریزلت یا دای دارتا اویه چه داو موتا چیرتا ملویشی
1: تار کنا داو تو دفا بانی گول شه اندرون لکی گیرد جان زبه گاله پر شوی مارکی شه دیشما مین دیستیبیوتر حافظ دیر سیب سر او درتا ملویشی

बिल्कुल जी, मुझसे पार्टिसिपेट कर लीजिए। बात ही नंबर बांधे 0373256127 प्रोग्राम की पार्टिसिपेट कर लीजिए। बात ही खातिर बानी कुर्बान जी, बिल्कुल प्रोग्राम की पार्टिसिपेट कर ना। बात चिकन मुझसे बिल्कुल राय अगस्ती सवाल दर नकुम सवाल जवाब हमारे बिल्कुल कुर्बान टिक रहा है। क्या चिमाल हमारे सवाल जवाब मुकम्मल टिक रहा है। इंडिया ना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान सीट ना हगे तो जमुंग इंडिया ना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान सीट ना चिकम बिल्कुल कुर्बान यो नहीं हो अदर चिकम दे हगे तब इनाम मिलावेगी खा इनाम जहर से भी कुर्बान इनाम इनाम भी खा अब इनाम को वर्कूट भी कुल भी को हगा हर सिंह भी कना खो इनाम बिल्कुल कुर्बान चादर सीट ने भी कना हगा पटेर से कब लवे खा।

ब्रीडिंग राउजी यस्त सुदानी दरा सिटी जत परेशान है हगा पौजूद पहार इस बांधे दा औडी जत तंग दरा गली है तास वाई चदा दानी बसिंग खत्मी की या वाई चस्ता पमला बांधे स्ता पसट बांधे स्ता पलासुनु बांधे स्ता सु बहु बांधे स्ता सु पौजूद पनूर हिसो माने दानी रागली दी ओगट दानी रागली दी समडीर जात वर न परेशान है या खारख रागली दी या सुराई सी जनी चंबल वतवली की हगा रागली दी ओ गसपुनी रागली दी बिल्कुल कुर्बान ज रागली हम तास तवाईम कने बेता सु टेंशन वाले ले जबवाईम कना चीज बई मोता सु टेंशन ले बिल्कुल दासी निश की देखा।

जी बिल्कुल वेलकम बैक यूजर लीगल खिदमत के हाजिर हुए प्रोग्राम प्रोग्राम बिल्कुल दे मजी कर रंगो नसरा नो सुमर हावर जिंग दिल से नदी प्रोग्राम से काला रोंदी मैसेज आ रोंदी मिश के शांते सबर तक के ना ओचे छ बियार मजी कर दे स प्रयोग कदम द से नगाड़

पीछे रखी फटकियां, उसे गुरूर है उसे चाहने वाले, उसे गुरूर है उसे चाहने वाले बहुत है, मुझे सब्र है कि मेरे जैसे भी एक ना होगा, हमारे बाद ना आएगा तुम्हें चाहो तो का मजा, और तुम लोगों से कह दे, तुम लोगों से कहते पेरोगी, तुम लोगों से कहते पेरोगी, चाहो मुझे उस पागल की तरह। वहाँ जबरदस्त हो जहाँ

आगे जी, खुजेफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम, फेस वॉश, तेल, शैम्पू, स्किन पॉलिश और पठुल प्रोडक्ट बंदो खबर अतरी कवि जी तुसी सरंगे प्रोग्राम मोला गवला ही करना जी प्रोग्राम और वही करना है और वही उम्मीद ला रहा हूँ तुसे वो मुसरा प्रोग्राम से विस्तार प्रोग्राम और सरा और विस्तार जफरान खार वक्त गम जन टापे गम जन टापे गम जन टापे सड़क पल गम जन जेतुता गम जन टापे वाला कवि ब्या ब्या सरा की हो खैर दे कना गुजरा कवा कला कला हो खश टापे खा और हुआ कना जन और पता नश्ता चेतु दे तशे गम जनी दो अल्लाह दे गम जनी लरे कहा हो खो बहार के फकाल न कवि खो मैसेजर के भी मैसेज पूते शी मैसेज शामिल है नशे खो खा मखा दे दम मैसेज फर्जी भी कना फर्जुल एन भी जी बहार के डेरा डेरा मना ना जाने खेले ना दाई दा वक्त मेरे सर आप प्रोग्राम से भी जेती ऊंचे की मदद जफरान अपना दागम जनी पंद्र घाट तीज अक्षर दी था घाट कोणा ऊपर अक्षर दी चे बैल कोल दफन शी वर्रका शी खातम शी पनाशी जी उसी प्रोग्राम तरफ था अब प्रोग्राम के शामिल अभी देतु से प्रोग्राम खुजीफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल की जी कचेरे तुसे दिखपल मख्स पी नवल गुड़ेस्ता इखपल मखीना शुस्ता कवल गुड़ेस्ता दिमखना दुनी दुगीना डबीना तरसरीदा खत्म कवल गुड़े कचेरे गुड़े जी देतु से मख बिल्कुल ठीक ठाक शी रोशान शी खिस्ता कुल शी दा डबीना तरसराए गुंजा या तुरवला दा हर सवर ना खत्म शी नतुसो इस्तेमाल की जी जेड कलर डबी वाल खुजीफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम ठीक है जी ओके जी हाँ कहना इस्तेमाल हुए कही कहना टास होता हो या यम सो देता हो या बस दाम रहा देता हो या यम छी कीमती क्रीम दी बेहतरीन क्रीम दी और दे तुसे दिफाई दी दी पूरा दीजिए जरूर ये इस्तेमाल कही कहने विदाई ने खपल सप्ले पक्ष का वो पिन दे आचा वो खपल डरना द्रेम से डेरे नो रेर पास हो गए ओए शायद खाना छेरे लुडर थाम शार वदर रा खबर अदर तक कुछ ज यूरे पड़काई पे जा कब बेबी आनर गडे सो चे यूरे में सार ठीट से पठीट सार दता रा उन सब या पोई सच शायद खान ब्या देर वापस न दा खन्ना ना सर बिल्कुल दे तुसे सराया और तुसे दिमो सराये दे फायदे खबर में देर तरवड़ी दी आओ फायदा दर कमा फायदा दर तुझे हलट हो न जरूर ये ट्राई की जरूर ये इस्तेमाल की दबन एंड ओनली खुजीफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम ओके जी देने लवा फेस वॉश हर सर इस्तेमाल वाले से फेस वॉश द खुजीफा कंपनी वाला नोरे कंपनी दामरा डेरे शवी दी का नाम छे सबुना छेरे दस स्तर दी को ना लौट से खाली पश्मेरा लबरी दुआ के माशो मशी तर बंदे हो कंपनी हो खत्म न से दाखा आगा दाखा आ आ आ आ आ बल और इस पेशावर से वो मेडिकल स्टोर तवेरा लल मलगर है वो अगर वाला है वो अगर सर तला है वो ब्याजेवेर अगलल का ना का चिकिम स्टोर ये वो दे मेडिसन वाला दाउ ये वाला यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी दा मुकम्मल खाने वरते जुड़े कड़ी है जब मुझ सोच कम हो जब पाले दा मरा डरे बीमारी खुद ही हो छे मतलब तो सीधे ए ना दे पीरा सा जेड रसा जे की मतलब मरा ही डाके कड़ी है दे और दे मेज पास तो ना माशाल्लाह माशाल्लाह ला दे डगा से लरी कहना जे पांडे पांडे वर नवरी पैसे वर कवि ओ जोन ता और एक औरत ओ बाहर के खुरी है दगास दमरा मड़े न खुरी लका दो यही चे खुरी नूर में तामर जवंदे वशडाई से जमा बेदासी ओ दिपुस इलाके वाला सर मिलाव शद दे वजीरिस्तान दे इलाके बोल व भी तकरीबन यो घाटा लका गिणे दे दो यही न डका कड़ेवा मुर्तल जना तो खुद गणे डाका कड़ी अला दा खैर वो की पिरा कुर्द पर दा यूरे करना स्टोर दे दा का सही सुल दा हम अलता दे दी कुंदे का वेले दे दामरा डेरा हो से दो दब जाऊ के रतो वेल विच ना असे हां साल और पिंजम याश तो रता लेकी खूब मोच पटा के पई वजी वो खलका ना बबिया ना शवर तला मोते पंजाव चवा लूस में लाओ का खैर खुदा वो तो तवी सही दो गना जे बस मड़ई माखरा वो दा दा हुई खुरा चार पाट तक से ना का ना मड़ई पजी दा फरा
در پر خندل وچ اسنا شا ساڑا سو کی وستا متوش ہے بیا سڑائی پشا ورتا پشر لائشی مرتا چ نا و در ر یو جوز بند با سر تک گنا چ ای ونا ڈائریکٹ سی تدا ہو سڑا یو پرو کول دو پستلا تے استعمال کرا چ و در ور سرا شکی جے کا ور سرا شکی جے نا کا ور سرا شنا شولے بو بیا سکے بو بجئی تریے پانڈری پئی دے پے ور کڑے

0: आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 खड़क, आपकी अपनी आवाज़।
1: द आवाज दे द अमन। द आवाज दे द पाकिस्तान। द आवाज दे द रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
2: रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम, म्यूजिक मस्ती और खूबसूरत पैगाम। हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन।

0: कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहाब रेडियो अमन 88.4 करक।
1: सिफात जैतून हर्बल आयल कतासु विख्त गुर्जीगी यादा मैदी तकलीफी और या ब्लड सर्कुलेशन मो ठीक नवी जोड़ो दर्दुना यादा पटो दर्दु नवी या पबदन कम जय के मोह दर्द वी और दादीना इलावा तासो द बवशीरो डेर ऑपरेशन ने कड़ी वी और ठीक शेवी नवी तदि टोलो मसलो हल द पारा सिफात जैतून हर्बल आयल इस्तेमाल कए दावतासुता करक बनु लकी मरवत शिमाली वजीरिस्तान जनूबी वजीरिस्तान टांग और डेहान के हर कॉस्मेटिक और जनरल स्टोर के आसानी सरा मिलावेगी। नोस लाडशे निजदे कॉस्मेटिक एंड जनरल स्टोर ना सिफात जैतून हर्बल आयल तला सक रहे मजीद मालूमात पारा सिफात कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान मेन डिस्ट्रीब्यूटर जहांगीर साहब सरा पदे नंबर रबिता कवले शे 0301 80 84 300।